0: छोड़ मेरी साड़ी।
1: छोड़ मेरा खत।
0: मैं कहती हूँ छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ मेरी साड़ी।
1: पहले मेरा खत वापस करो।
0: क्यों?
1: शर्म नहीं आती दूसरों के प्रेम पत्र पढ़ती हो?
0: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो?

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते नमस्कार सीताराम और अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर अर्ली मॉर्निंग एडिशन ऑफ शबनम एंड स्पेशली डिजाइंड टू असिस्ट यू विद योर अर्ली मॉर्निंग चोर्स एंड टू पुट यू इन ए पॉजिटिव एंड गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड टू ऑल्सो इग्नाइट स्पार्क्स ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन टू यू एंड योर लव्ड वंस और ए बहारे बाग अरुणिया चंद रोज देख लो इसका तमाशा चंद रोज और ए मुसाफिर कूचका सामान कर इस सलामे है बसीरा चंद रोज। From Trinidad and Tobago, my name is Boeing Mohammed, now extending to you a very warm welcome to join my youthful and brilliant producer, presenter, Richard Aziz.